थंगमुंगनो जिनी भारत हाक्तरनी जे जों टीवी रोगो नायलेमेनी आजाखारगो जों नोगो खनाय तनाय रांसाकनि ताखु बखु नरक जतनन कबगो ककदुगो गोरोंनानि बाखै ककदुग नम्बर 2326253 तिनिनि सालकामा पान्दानि कक प्रथमा जों चिनि हायुंनि फुटबल एबा जे थुंमुं अबचिनि भारत हाक्तर तै चिनि हायुंगो बाहायखे चिनि बोखानो कबलखा अबनरगै जों दादाक सिदा ककलाम सालायनाय नरक जतनन कबकनाय ककदुगो गोरोंदि फिफा वर्ल्ड कप चलिगुई दङ अबजों जतन सायमानो अ फिफा वर्ल्ड कपनो रुगै दै फुटबलनि लाइभ बुमानो रुगै जों ककलाम सालायदै नरक जतनन कबकनाय चिनि हाक्तर भारतनि फुटबलनि लांमा दै रमदि चिनि भारत तो ताकफानो थोंगै मानैयाखौ हायुं फुटबलनि जि कप आजागाव थांगै मानियाखौ बा वाइसापानो मानियाखौ आबुनि बागै जों खोनालायनाय दादाक सिदाक दिनैनि सालकामा पान्दाव अबनि लाइबुमा फुटबलनि लाइबुमानरखै जों ककलाम सालायनाय लगिय' दिनै साबु साबु साबुबाय थोंलायनाय आबुबो जों खोनालायनाय नरक जतनन कबकनाय फिफा वर्ल्ड कप 2026 आबुनरखै जों दिनैनि सालकामा पान्दानि कक बथमा नारखा फुटबलनि लाइबुमा अबनरखै जों ककलाम सालायनाय नरक जतनन कबकनाय दादाक सिदाक ककदुगो गोरोङिमानो ककदुग नम्बर 2326253 हायनो हाय गिदिंगै साफिरानो 232253 रांसाकनि थाखो बखु नरक जत बाय गोरोङै जों ककलाम सालायनाय तिनिनि सालकामा पान्दानि कक बथमा चिनि सालकामा पान्दानि कक बथमा जों सालायनाय दिनै फुटबलनि लाइबुमानो रोगै ककलाम नरक जतरन कबकनाय ककदुगो गोरोङै मानो चिनि हायुं फुटबलनि लाइबुमाव फुटबलनि इतिहास एबा हिस्ट्रिनो जों तुमुं नायटुकनानि थांखानखे गोजाम चिननि सिबिनो चेंजाखौ होनै आबौ गोबांमा बर' रग्न' सालायतै गोबांमा बिजाब रग्न' सैजाक मानो अ फुटबलनि लाइबुमाव दाबुक गोदाल खालायै फुटबलनि आजायमुं ओंखा आबुंखा इंलेण्ड फियाबा आबुनि से सिगांनो तिन रग' बहायनो पैला फुटबल थोंजागौ ख्रीष्टपूर्व द्वितीय याखेबा तृतीय शताब्दी रगो चीन सुजुनै कायसा आबो कायसा थोंमुं आबो आ थोंमुंनि रायदा दंमानि आबुनो फुटबलनि गोजाम ककनि रायदा एबा फुटबलनि गोजाम ककनि गोरों होनै बर' रग हायुंनि बर' रग सायमानलायो आव रांसाकनि दाखु बुखु ख्रीष्टपूर्व आबो रमदि जिसु ख्रीष्ट एबा जिजास क्राइस्ट आसायनानि सिगां द्वितीय तै तृतीय शताब्दी न चाइनाव सुजु होनै कायसा थोंमुं आबुनि रायदा दंमानि आ थोंमुंनि रायदाव गोजामकुक फुटबलनि रायदा एबा फुटबलनि थोंमुंनि गोरों दंमानि आबुनि यागुलो दाबुकनि गोदालकुक फुटबल चेंजाखा एबा आबुनि रायदा सिनामजाखा बा गोदालकुखे रायदा सिनामै जे थोंलायमानि आबुंखा रमदि इंलेण्डआव

अबनो रुक्सावैनो फुटबल बाहेके चिनि हायुंगो चेंसा जाखा अबनो रुगै जों ककलाम सालाय दङ दिनिनि सालकामा बान्दाव खनाय दंनाय रांसाकनि ताखु बुखुक दाबुक जों खोनालायनाय दिनिनि हायुंनि खरां बान्दा

गोविंद बगई जोतन खिबुएबा कारिमनो फिया जोतन बगई गोविंद खिबुएबा या कारिमनिया गोविंद रोतुम निंखा कथार फानपुनुम एबा पहर पुनुम अम फानकेसन एबा कानांगई मानिरक कप्रमई रोतुमनि हाया तीर्थ एबा मंदिर थांका आलादाखे कपाला फता पुनुम बाय एबा आलादा कानून चुम चुम बाय धर्म एबा तंथार इंगिया नोंनि निशाखनो दाल विदाल मूल एबा रंग बाय इरेकै मसा हाय एंगै तंगै मानो फिया जेसेक सालजरा मुनि खा न क्वार ताय कथार क्लायासाक कायतर एबा भगवाननि बागै खा मिथिगासाक जतो न तखाथाइसुमु तुमु खाकुआर कसरांग तंखंके तई फातर निदाल विदाल मल एबा रंग नांगिया धर्म एबा तंथन रगई खा मिथि खेन बन पुतु जा खेन जतो सामु साबायनाय आसोदरा संग हायो घरंग पुलामा संक्रांत लगिया कक हम स्वामी विवेकानंद साहित्य मुनि कक

खोनाथनाय रांसाखनि थाखोबोखौ सा खामख्रायनि गग' दाबुकजों खोनालायानो सिख्ला रुपनि बिसिंगु तामनि बागै गोबांखौ हार्ट एटेक आबनो रोगै ककथायसा थायनि हार्ट एटेक अबो आगि रग हंखे गोसार माजेनि उमरनि बररक उखेबा चाक्राखौ बररक बरकनि बिसिंखसे गोबांखौ उंग' फियाबा दाबुकनि अमलाव फायि हार्ट एटेक बेलाय गोबांखौ ख्लायि चराय रगनि बिसिं रमदे आबो सिख्ला चास्लक नि सिमि रमदे उमर थामसि उमर ब्रैजि आपति हाय उमर नि बररकनि बिसिंखबो बेलाय गोबांखौ ख्लायि नुगजागै दंखा हार्ट एटेक आबंखा चिनि हार्ट एबा चिनि बखा आजागाव तुमु थै गाहाम ख्लायि थांलाय सुख्लाय मानिया ओंगै दंखै एबा थै थांलाय सुख्लाय दंफुरु केबल मुं तुमु नुगजाखा होनखे दै आबनो कारै चिनि थै थांलाय सुख्लाय मानि दमनि व तुमु गोबांखौ ख्लायि बुफाम आसुगै थांखा होनखे ओंयाखेबा आब्लाम तुमुनो मुंसासुक मानै ओंयाखे हामिया मुंसासुक थैबाय ओंयाखेबा मुंसासुक ब्लकेज स्टकबाय आबो ब्लक ओंगै थांखे एबा कासुजाखदै ओंगै थांखा होनखे जिनि बोखाव गाहाम ख्लायि थै थांमानिया ओंखा होनखेनो हार्ट एटेक नुगजाखौ सिख्ला रगनि बिसिंगु तामनि बागै गोबांखौ ख्लायि हार्ट एटेक नुगजाक आबो ओंखा ताबुकनि उमरनि बा ताबुकनि अजरानि चामुं नुंमुं रग रमदि फास्टफुड गोबांखौ खे चामानि आबनो कारैबो बुफाम गोनां मानै प्रसेस्ड दै गोबांखौ ट्रान्स फेट सोडियाम चिनि आमतिहाय गोबांखौ मानैनि मानै चाखा होनखे जेरै हार्ट एटेक ओंनानि गोबांखौ चान्सेस दंग' आबनो कारैबो रमदि ब्याम रग ख्लाया नांकुक मानि सोगिमिया सामुं ख्लाया कलम तुइ रहरिया उइ दंमानि आबनो कारैबो मोबाइल कम्पिउटार आमतिहाय मानै बाय गोबांखौ दंखा होनखे चिनि दमनि व एबा चिनि थै थांलाय सुख्लाय मानि आ लामतै आबो गोबां मखेबिं मुं नुगजाखै मानो आबनो कारैबो एरें एरें वान सुखमणि सामुं ख्लाया उइ दंमानि तै गोबांखौ रां पैसानि वाना चिन्ताव ख्लायमानि आमतिहाय गोबांखौ ख्लायि रमदि स्ट्रेस डिप्रेसन आमतिहाय तुमुं ओंखा होनखे बोखानि कर्टिसल उखेबो बैसाखनि कर्टिसल एड्रेनालिन हरमोन आबो बारि उइ थांगौ आसमसा जलिमानि आतमसा किरिमानि आतमसा गोबांखौ एबा गोबां मा वाना मासिंसा पातिमुं रग' ख्लायमानि आबो बाय चिनि दमनिनि थै थांलाय सुख्लाय थानि गेबेंबुं नुगजाखौ आबनि बागै स्ट्रेस डिप्रेसन ओंखेबा आमतेहाय वाना चिन्ता ओंखेबा आचमसा ओंमानि आमतेहाय पातिमुं रग चिनि बैसाखनि कर्टिसल एड्रेनालिन हरमोन बारिरै खिबौ आबो बाय चिनि बोखाव हार्ट एटेक ओंनानि गोबांखौनो आबो सेफ दं रोगै थांगौ आबनो कारैबो ताबुकनि उमरनि बररक गोबांखौ ख्लायि दुमा बिरि सिगारेट ओंखेबा केफेकनि मानै आबनो कारैबो रमदि ड्राग्स आमतिहाय हकुनि मानै आमतिहायर गोबांखौ चामानि बागैबो आमतिहाय गोबांखौ ख्लायि जिनि हार्टनि बेमार मानजागै मानो आबनो कारैबो डायबेटिस गोबांमा ब्लाड प्रेसार दै दादाक सिदाक केफेक्टनि मानै चामानि आमतिहाय रगनि बिसिंतैबो हार्ट एटेक नुगजाखै मानो आबनि बागै निनि बोखा तुमुं किसा सारेरे सारेरे आमतिहाय ओंखा होनखे आजमसा तुमुं नों कलमतै गामा गामा ओंखा होनखे आजमसा हामा रहरि मानिया ओंखा होनखे फिकुं बांगुरा दै

थामचिनि सालो नागार जागोन डायरेक्टरेट अफ सनिक वेलफेयर नि तांगनगो अमनर्गो टाइप काम का सैमान मसुखाके सनिक वेलफेयर त्रिपुरा नि वेबसाइट sonicwelfare.tipra.gov.in ओ नाइमानो

सिलाई बुमुंग गनां बरखनी बिनी बुमुंग तेई सिनी जाको चिचारा सिनी सिनी ख्रिस्ट बिशुओ ब पुइला भारतनी फुट भारतनी इंगई ब फुटबल थुंगो फिया ब अरो कायसाको खुरसाताय क्लायो चिनी भारत हाक्तोर तापुक फानो फिफा वर्ल्ड कापो थांगई मानियाखो फिया ब कुबुनी थायरोगो कुबुनी थुंग कुबुनी जागाओ जेफुरु थुंगपुरु भारतनी फुटबलनी लाइबुमाव हुंके चिचाररा चारचिचुको ख्रिस्ट बिशुओ मोहन बागान एथलेटिक क्लाब अबो सेंसा जागो अबो एशियानी बुमुंग गनांको तेजोतनिसलाई कचामको फुटबलनी क्लाब नै सिनी जागो आउ रंगसक निताको बुखु चिचाररा चारचिचुको ख्रिस्ट बिशुओ चिनी भारत हाक्तरनी मोहन बागान एथलेटिक क्लाब अबो फुटबलनी अजे क्लाब अबो एशियानी जतनिसलाई कचामको क्लाब नै सिनी जागो आई एफ ए अबो गठन खलाइसाको अबो चिनी हाक्तर भारतनी बाकै चिचाररा चुकुचिथाम ख्रिस्ट बिशुओ चिनी भारत हाक्तरनी इन्डियन फुटबल एसोसिएसन आई एफ ए अबो सुनाम जाको रांगसाक नि दाखु बुखु नरो ककदुगो कुरुङी बानो ककदुक नम्बर 2326253 हानो हाय किदिङै साफिरानो नै थाम नै दक नै बा थाम हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो चौई थांका है ना है आओ रंगसकनी ताकु बखु आबनो काडीबो चिचुकुरा चीशा ख्रिस्ट बिशुओ आई एफ ए सील्ड फाइनल अबो मोहन बागान अबो ब्रिटिश नी दल बाय ईस्ट यॉर्क सायर नी रेजिमेंट नी बिशिंगो दुई एक गोलो अबो कपलाई उमगानी भारत नी फुटबल नी लाइबुमाओ जों नुगजाखौ रमदि आबनो काडिबो इस्ट बेंगल महामेडन अबो चिचुकुरा नैची ख्रिस्ट बिशुओ इस्ट बेंगल क्लाब अबो महामेडन स्पोर्टिंग क्लाब नो अबो कलकाताओ फुटबल नो तेइबो आलाइदा ख्लाइ चिनि भारत हाक्तरनि बररकनि थानि नाइजाक नाइ तेइ बखा गनां तेई जतनिसलाई नाइथतक आमति हाइ थुंमुं ख्लायै भारत हाक्तरनि लुकुरकनि बखानो बेलाय खगै द्लांमानि अबनो जों साइमानो रांसाकनि ताखुबुखु जों दिनैनि सालकामा पान्दाव ताबु फिफा वर्ल्ड कप चलिबि दङ अबनो रुगै फिफा वर्ल्ड कपनि अ थुंमानि अ जराव फुटबलनि लाइबुमा अबनो रुगै जों ककलाम सालाय दङ रंगसकनी ताकु बुखुक आपनो कारी फिफा विश्वकप अबो बांग्लादेश नी फुटबल नी दल नी दादाक सिदाक खेला एबा थुंमुं अबो बांग्लादेश नी इंगै कायसापानो फिफा वर्ल्ड कपो थांमनी आबनी लाइबुमा गरिखो फिफा वर्ल्ड कप नी अबेचेबो वर्ल्ड कपनी थंगमुंनी अबेचेबो जों नुगो चिनी विश्वकप वर्ल्ड कपनी जे थंगमुं अबो बेलायखेनो बुमुंगनां आजागो थंगनायरो तंगो रमदि जों मियानी जे थंगमुंगो जों नुखा

0: एकमात्र सानानि थाखा हांखे अबो ग्राउन्डनो जों आबो सुरुंगै मानो नेनि लाइफ अफ हायनो नों बुइनो फुनुकमानि जुदा तै नों बिसिंनि प्लान ख्लाइमानि जुदा हांखे नों बुफुर साखा कासाय थां सायमान रक्या आव अबो बेलायनो क्लेवार बेलायनो बख्रक गोनां रकनि थोंमुं आबो बेलायनो हामबाय नन' गोरोंमानि बाखै बेलायनो हामबाय थाखुक आव आव रंगसाकनि दाखु बखु जों दिनैनि सालकामा पान्डाव सालाय दङ तबुक्तु फिफा वर्ल्ड कप 2026 सलि दङ अबनि फुटबलनि लाइभ मानोरखै जों सालाय दङ चिचुगुडा थामचि ख्रिस्ट बिसुओ पैला वर्ल्ड कप फिफा वर्ल्ड कप सेंगो आबो जों जतन सायमानो वर्ल्ड कप बिसिब्रैनि उल उल उंगो तै अबो हायुं रेमनै जे युद्ध अंमानि रेमनि बेचेपनि जे युद्ध अंमानि बा द्वितीय विश्वजुद्धनि कारणे अब चिचुकुरा ब्रिचिनै निसिमि सानानि थांखै चिचुकुरा ब्रिचिद जरा अब रन्दियाबो द्वितीय विश्वजुद्ध सेकेन्ड वर्ल्ड वार नांमानि बागै आ बिसिरगो आबो उंगी मानलिया आबनो कारै चिचुकुरा थामचि ख्रिस्ट बिसुओ उरुगुयेओ उंमानि आजराओ काइ चिथाम एबा तेरोटा देश एबा तेरोटा कान्ट्री आजागाओ थोंलायखा फाइनालाव आर्जेन्टिना 4-2 गल बाय चेम्पियन ओंखा तै जुलेस रिमिनि जे ट्रफि दंमानि आबो जे वर्ल्ड कप ट्रफि फिफानि जुलेस रिमिननि बुमंगै आबो कप रुजाकमानि आबो उलो चिचुकुरा स्निचिब्रै ख्रिस्ट बिसुओ तै ताबुकनि अजराव गोताल ख्लायि फिफा राइदा ख्लायजाकमानि उलो फिफा विश्वकप ट्रफि होनै आबो याफार जाखै दंगो हायनो हाय गोरोंगैनायानो ककदगो साबो दं हेलो हेलो हेलो हेलो चौ इथांका हायनो हाय आव रंगसाकनि दाखु बखु पैला चेंद्रबो आबो तेरोटा बदल इंखेबा चिथाम बदल लोक चिथाम ता देशनि एबा कान्ट्रिनि थोंनाय रक थोंलायखा आबुनि आगलो चिचुकुरा चुकुचिचार ख्रिस्ट बिसिनि सिमि नैसाय नैचिनै बिसि जरा 2022 जरा 32 कान्ट्रिनि बदल रक आजागाव फिफा वर्ल्ड कापो थोंलायो ताबुकनि दाख्लैनि अ बिसुओ नैसाय नैजिद बिसुओ अब मार्किन जुक्तराष्ट्र कानाडाओ ते मेक्सिक' अब काइ ब्रिचिचार एबा 48 कान्ट्रिनि बदल रक थोंलायै दंगो रंगसाकनि दाखु बखु जों अ वर्ल्ड कापनि जे लाइभमाव ब्राजिल मानखा 5 बार जर्मनी मानखा 4 बार इटाली मानखा 4 बार आर्जेंटिना मानखा 3 बार फ्रांस मानखा 2 बार उरुगुए मानखा 2 बार इंग्लैंड मानखा 1 बार तै स्पेन मानखा 1 बार रंगसाकनि दाखु बखु थांते थांते तिरिनि जे थोंमुं अबनो किसा साय कलांसिनो जों सायमानो तिनि आबोथ' पाइ थांखा हरदीपर थोंलायखा इंलेण्ड बाय गाना हरदीपर एबा आइचुकराव थोंलायखा पानामा बाय क्रोएटिया तै ताबुकनि फुंग' कलम्बिया बाय डिआर कंग' थोंलाय दङ आसुकजरा तिनिनि सालकामा पान्दा आसुकजरा तिनि अंसिथुन जतन बेलाय बेलाय खेदौ
1: আকাশবাণী খবর পড়ছি অনিন্দ্য সুন্দর রায়। শুরুতেই বিশেষ বিশেষ খবর। কাতারে বিস্ফোরণের ঘটনায় প্রবাসী

0: बॉक्स देख रहे हो? इस बॉक्स में आप सबके लिए कुछ एनवेलप्स हैं। आप सब यहाँ आओ और ये एनवेलप्स ले लो।
1: मैम, मेरे वाले में तो एचआईवी से रिलेटेड अलग अलग मैसेजेस हैं
2: और इसमें लिखा है कि असुरक्षित यौन संबंध से एचआईवी हो सकता है।
3: मेरे वाले में नीडल या इंजेक्शन शेयर करने से एचआईवी फैलने की बात लिखी है और इसमें लिखा है कि संक्रमित रक्त और रक्त उत्पादों से एचआईवी हो सकता है। मल्टीपल पार्टनर्स मतलब एचआईवी का ज्यादा रिस्क।
0: हम अपनी जिंदगी में अच्छा बुरा सब जानते हैं, लेकिन फिर भी कुछ बातें इग्नोर करते हैं। तो मैंने सोचा जाते जाते याद दिला जाओ, ताकि पूरी जिंदगी इग्नोर नहीं याद रखोगे।
4: एचआईवी एड्स से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के आईसीटीसी में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। नेको स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा

0: सिद्धुक्टी ओयस्ते रिमानी बिशिंगते एच आई वी मानजाकना निका तिरुई मानो ते काम करंग तोंगी मानो
1: चीनी हास्ते वो जुदा जुदा हां खुर्नी खुंबा चीशा शाक हम नगो रंग नंगे वो ओयस्ते रिना निशेप तोंगो
0: आवोनी बागी ने ओयस्ते रिमानी ने यासाक दे काम करंग तोंग दे काम के साई मना मगे टोल फ्री नंबर 1097 करंग दे
1: त्रिपुरा एड्स कंट्रोल सोसाइटी शाक हम ते नुकुं हम करे नाइकुं त्रिपुरा हाफंग बाई लुकु हम करे नि बागे आवाय जाक ताबुक फानो एड्स नो का सुना टीका करी खो एड्स नो का सुना तुमसा नो लामा आबो उंखा एड्स नो सिनानी
0: कंदम थुबी आवो हिसास मैता तंगाय दे थेर उफ्रुते ना फ्रो सिरिंज के तालो करे सागोता थेपा दे
1: सुचि कंक्षा बाई ड्रग्स ता नालाय दी तै सुचि कंक्षा बाई साकुरो टेटु बतारिक जग दी
0: सागदरिया बरि रक चराय अक्सिंग तंगफ्रो काम के साकमा नाय जक नाय
1: लांगमानो हमचाके एड्स नो कासु दी त्रिपुरा एड्स कंट्रोल सोसाइटी शाखामते नुकुम हमक्राय नायखु त्रिपुरा हाफंग बाई लुकु हमक्राय नि बागै आवाय जा

जराव एसएमएस नाइने शाबता मसीहरका अनि सिनिमुङ उनका साधन देवपुरमा अनि कामी हिंके तोक्सापारा अनुरचाप मुङ कैसा खनारे दे रचापुङ ने कोक्त हिंके आंगले फायन मानिक देवपुरमा बाई रूमी मुराशिंग बाई रचाप जाखंके ताकुक साधन रचापुङ खनाना हिने कोहरका ताकुक मानिक दे बुकुक रूमी मुराशिंग ने खरंग बाई के आंगले फायन और रचापुङ नहंके फायदी खनालाय ने बिनिखरा तोक्साक मानी और रचापुङ तेजो तुम्हारे किचिंग शोंग नरो बखना दे बिनि अंगे और खनातो तक रचापुङ

हमके सिंह रचामुंग तो खनालाई न तोंगो हमके फायदे ते बो खनालाई ने हमके जरा और शब्द तो मुसीहर का एसएमएस नाई है नो है नो रोकनी खना तोंग जाक मनी रचामुंग रोका अंग खनारे पीना इनके आ सीहर ने खा पुंग का हाम बाई आ अंग रचामुंग तंगशा खनानाई जादुनी रचामुंग ओनिल नी रचामुंग अनि अनि मुंखे के अंकै रचाप मुंखनाना हिनी कोइ हरका जादुनि रचाप मुं ताखो गोनिल देबरमा बाय रचाप जाक रचाप मुंखे फाइदि खना लाइने ओ जरावो रचाप मुंनि कोखथाय जादुनि रचाप मुंगो तो रचाप मुंनि कोखथाय करिबा अंकै जेबा तांगशा अंकै निनि बागे ओ खना ततो रचाप मुं

0: ये बॉक्स देख रहे हो, इस बॉक्स में आप सबके लिए कुछ एनवेलप्स हैं। आप सब यहाँ आओ और ये एनवेलप्स ले लो।
1: मैम, मेरे वाले में तो HRD से रिलेटेड अलग अलग मैसेजेस हैं
2: और इसमें लिखा है कि असुरक्षित यौन संबंध से HIV हो सकता है।
3: मेरे वाले में नीडल या इंजेक्शन शेयर करने से HIV फैलने की बात लिखी है
4: और इसमें लिखा है कि संक्रमित रक्त और रक्त उत्पादों से HIV हो सकता है। मल्टीपल पार्टनर्स मतलब HIV का ज्यादा रिस्क।
0: हम अपनी जिंदगी में अच्छा बुरा सब जानते हैं लेकिन फिर भी कुछ बातें इग्नोर कर देते हैं, तो मैंने सोचा जाते जाते याद दिला जाओ ताकि पूरी जिंदगी इग्नोर नहीं याद रखोगे।
5: HIV/AIDS से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री AIDS हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। नैको स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
6: खानी रचापुंग पांडनी पाइथक रचापुंग संख्या लाइन है नाइते नाइते जोरा तो थांगी दंका है द जंग जो थोड़ा साइमन और सरांग शालो जंग दीबोनी दाम चीनी दाम इस शोधी जीवा जोरा खानी रचापुंग पांडनो दी दुलो आपने यागुलो नर खाने मान पाइने थूम नो ग्रोहन के पांडा पिया बा चौया उइनो पाया उइनो खाना उइ दंग दी हिंके जरा वो शाबता मुर्सी हर खाना लेने हिंके बाई फुंग फुंग दी बोर का हम बाई आंगना की छोरा निकलान तो आंग रचापुंग तांग शा खाना नाई कोक था हिंके नो खानो मुचांग रनाई ताल से हम बाई नो नो हिंके नो नो बो बलाई नो हम बाई हो जरा वो हिंके खाना दी और रचापुंग खाना लाइनो चीनी तीनी नी खाने रचापुंग पांडनो जंग पानी लाइस नहीं हिंके ताको क्लान तो खाना दी नी खाना तो सक पानी और रचापुंग।

0: 어저 내서 어떤가 문의 문의 뭐
1: 아숙제라 연락하는 자라고 로제브리카리카 자녀문이 덮불마 아카스파니 아그르탈라
2: HIV AIDS는 어서이 기리아카레 HIV대 AIDS는 세카 함께 지나난 거 함작나 바이 바이케 AIDS는 가 순하니 아보세시디
3: AIDS는 세 셸링디 AIDS 만작네 버럭메야 AIDS는 가 순하니 아보세 셸라마
2: 가 함께 지나바게 톨 프리 넘버 1097 폰 카디 하스테네 주다 주다 암체 피옥작 주바 몽타니 주바주 나디
3: त्रिपुरा एड्स कंट्रोल सोसाइटी शाख हमते नुकुन हमक्राई नाइकुन त्रिपुरा हाफंग बाई लुको हमक्राई निबागई आवाजा त्रिपुरा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी ने एआरटी सेंटर हास्तेने की शशोक हांखर शाख हम नोकते बखक्सते शाख हम नोको तंगो
2: रांग नांगे हुए आरो एआरटी सर्विस नाओ इमानो बिथियो नाओ इमानो অসেপ নাওই বাইথনো কাহাম খ্রং ক্লাইতি সাদে
3: ত্রিপুরা এইডস কন্ট্রোল সোসাইটি শাখান্তে নুহু হাম করে নাইকুম ত্রিপুরা হাফং বাই লুকু হাম করে নিবাগে আওয়াই যা

आकाशभरि आगरतला टाबुक खाना भएन थुक तिमी थुक नुनु दाइद्र अवश्य क्या त कम्थेङका मचाङ रोहित चन्द्र डब्बरमा तिमी खैर जग्न पुल्ला बुखाक

जों दाल बिदाल फान्दो दाल बिदाल रेचा पुंसं खनालाय थंग उथे कपुरो हिन्दी रेचा पुंसं खनालाय थंग खाख्लाय नरो गेंजे खे थंग खना हर रेचा पुंनो के दिपोरनि जराबा दिपोरनि माइते डक्टर चाबाय खना गाय

0: रहे, हार फूलों के जो गुलशन से वो लेकर निकला, अपने फूलों से मचलती हुई बुलबुल ने कहा।
1: क्या
0: जाते जाते

0: আমরা অনুষ্ঠানের একেবারে শেষ প্রান্তে চলে এসেছি। এই মুহূর্তে ছোট্ট একটা বিজ্ঞাপন বিরতি।
1: আপনি জানেন কি, এসটিআই অর্থাৎ যৌনবাহিত সংক্রমণ কিন্তু এইচআইভির সংক্রমণের ঝুঁকি বাড়ায়। তাই মনে কোথাও সন্দেহ হলে অবিলম্বে এসটিআই আরটিআই এর চিকিৎসকদের পরামর্শ নিতে হবে।
2: একজন নিবন্ধিত চিকিৎসকের কাছ থেকে চিকিৎসা গ্রহণ এবং কুসংস্কার থেকে দূরে থাকুন।
1: নিরাপদ যৌনতা মেনে চলুন, কন্ডোমের সঠিক এবং ধারাবাহিক ব্যবহার করতে শিখুন।
3: আপ সব ইয়ে বক্স দেখ রহে হো? इस बॉक्स में आप सबके लिए कुछ एनवेलप्स हैं। आप सब यहाँ आओ और ये एनवेलप्स ले लो।
4: मैम, मेरे वाले में तो एचआईवी से रिलेटेड अलग अलग मैसेजेस हैं
5: और इसमें लिखा है कि असुरक्षित यौन संबंध से एचआईवी हो सकता है।
6: मेरे वाले में नीडल या इंजेक्शन शेयर करने से एचआईवी फैलने की बात लिखी है
7: और इसमें लिखा है कि संक्रमित रक्त और रक्त उत्पादों से एचआईवी हो सकता है।
8: मल्टीपल पार्टनर्स मतलब एचआईवी का ज्यादा रिस्क।
3: हम अपनी जिंदगी में अच्छा बुरा सब जानते हैं, लेकिन फिर भी कुछ बातें इग्नोर कर देते हैं। तो मैंने सोचा जाते जाते याद दिला जाओ, ताकि पूरी जिंदगी इग्नोर नहीं याद रखोगे।
9: एचआईवी एड्स से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के आईसीटीसी में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। नैको स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
1: আপনি জানেন কি, এসটিআই অর্থাৎ যৌনবাহিত সংক্রমণ কিন্তু এইচআইভির সংক্রমণের ঝুঁকি বাড়ায়। তাই মনে কোথাও সন্দেহ হলে অবিলম্বে এসটিআই আরটিআই এর চিকিৎসকদের পরামর্শ নিতে হবে।
2: একজন নিবন্ধিত চিকিৎসকের কাছ থেকে চিকিৎসা গ্রহণ এবং কুসংস্কার থেকে দূরে থাকুন।
1: নিরাপদ যৌনতা মেনে চলুন, কন্ডোমের সঠিক এবং ধারাবাহিক ব্যবহার করতে শিখুন। মনে রাখবেন, অসংযত জীবনযাপন, যৌন মিলন আপনার দেহে এইচআইভি সংক্রমণ ঘটাতে পারে।
2: যদি কেউ মনে করেন তিনি এইচআইভি

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि दूत जेमिसन ग्रीर के साथ व्यापार वार्ता की प्रगति की समीक्षा की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून से सोल में मुलाकात की। वैश्विक चुनौतियों के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को मजबूत करने का आह्वान किया। ओमान ने होर्मुज जलडमरू मध्य से एक अस्थायी समुद्री गलियारा खोलने की घोषणा की। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में निर्माणाधीन गोदाम गिरने से 3 लोगों की मौत, बचाव अभियान जारी। अरुणाचल प्रदेश में मूसलाधार वर्षा से अचानक बाढ़ आई, असम में चेतावनी जारी की गई। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में कनाडा आज रात स्विट्जरलैंड से खेलेगा। अब समाचार विस्तार से। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि दूत जेमिसन ग्रीर और उनके प्रतिनिधिमंडल के साथ नई दिल्ली में बैठकें की। श्री गोयल ने भारत अमरीकी व्यापार वार्ता की प्रगति की समीक्षा की और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने के अवसरों की खोज की। उन्होंने राजदूत ग्रीर के नेतृत्व और दोनों पक्षों के रचनात्मक तथा प्रगतिशील तरीके से वार्ता को आगे बढ़ाने के निरंतर प्रयासों की भी सराहना की। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने आज नई दिल्ली में सामरिक रक्षा साझेदारी ढांचे के अंतर्गत रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए एक बैठक आयोजित की। बैठक की सह अध्यक्षता अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के संयुक्त सचिव अमिताभ प्रसाद और संयुक्त अरब अमीरात के ब्रिगेडियर स्टाफ जमाल इब्राहिम मोहम्मद इब्राहिम अलमारजूकी ने की। चर्चा का मुख्य विषय रक्षा उद्योग सहयोग का विस्तार करना, नवाचार को बढ़ावा देना, विशिष्ट तकनीकों का लाभ उठाना और समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना था। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिदृश्य के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को और मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया है। सोल में दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ बैठक में डॉ. जयशंकर ने कहा कि वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में विश्वसनीय साझेदारों के बीच सहयोग पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया है।
1: It is really our responsibility.
2: इस साझेदारी को आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। इसमें सरकार के अलग अलग विभाग और देश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलू शामिल हैं, जिनके बीच तालमेल बिठाना बहुत आवश्यक है। मैं कहूँगा कि हमें भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक आधुनिक साझेदारी की ओर बढ़ना चाहिए।
1: रिलेशनशिप इन अ मोर डिफिकल्ट वर्ल्ड।
0: ईरान में मौजूद भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों के लिए यात्रा परामर्श जारी किया है। दूतावास ने कहा है कि अगली सूचना तक भारतीय नागरिक जब तक आवश्यक ना हो ईरान की यात्रा न करें। एक रिपोर्ट।
3: जो भारतीय नागरिक वर्तमान में ईरान में रह रहे हैं या किसी आवश्यक कारण

0: लिए वहां यात्रा करने जा रहे हैं उन्हें विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। दूतावास ने भारतीय नागरिकों से कहा है कि वे अपने आसपास की स्थिति पर लगातार नजर रखें और स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें। दूतावास ने ईरान में मौजूद सभी भारतीय नागरिकों और वहां पहुंचने वाले लोगों से जल्द अपना विवरण भारतीय दूतावास में पंजीकृत कराने की अपील की है। भारतीय नागरिकों को दूतावास की आधिकारिक वेबसाइट और सोशल मीडिया मंचों पर जारी होने वाले अपडेट तथा सलाह पर नियमित रूप से नजर रखने की भी सलाह दी गई है। विष्णु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: इस बीच ओमान ने होर्मुज जलडमरू मध्य से एक अस्थायी समुद्री गलियारा खोलने की घोषणा की है। ये वाणिज्यिक जलमार्ग को बहाल करने और खाड़ी में फंसे हजारों नाविकों के संकट को कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। ओमान सरकार ने कहा है कि ये पहल संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के समन्वय से की गई है। इससे क्षेत्रीय संघर्ष से जुड़ी महीनों के व्यवधान के बाद जलमार्ग से जहाजों की सुरक्षित आवाजाही को सुगम बनाया जा सकेगा। संगठन के अनुसार क्षेत्र में 11,000 से अधिक नाविक फंसे हुए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज नई दिल्ली में वीआईपी कल्चर इन इंडिया पावर प्रिविलेज एंड डिस्टेंस फ्रॉम डेमोक्रेसी नामक पुस्तक का विमोचन किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये पुस्तक सत्ता संस्थानों और लोगों के बीच मौजूद दूरी को जन केंद्रित शासन के माध्यम से इस दूरी को कम करने की आवश्यकता पर बल देती है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये पुस्तक दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में भारत की पहचान का उल्लेख करती है।
2: The Bharat is the world's largest democracy and is also called the mother of democracy. Our constitution envisions a society based on justice, equality, liberty and fraternity.
1: उपराष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उदाहरण देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने नीट परीक्षा देने वाले छात्रों को यातायात असुविधा से बचाने के लिए हवाई अड्डे से अपनी उड़ान लगभग 45 मिनट तक विलंबित की थी। रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह ने आज पंजाब के जालंधर में दो महत्वपूर्ण रोड ओवरब्रिज आरओबी परियोजनाओं की आधारशिला रखी। उन्होंने बताया कि जालंधर शहर जालंधर कैंट खंड पर गुरु नानकपुरा आरओबी का निर्माण 48 करोड़ 95 लाख रुपए की लागत से किया जाएगा, जबकि दूसरा बस स्टैंड गढ़ा रोड आरओबी 63 करोड़ 98 लाख रुपए की लागत से बनेगा। दोनों परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता रेलवे देगी। गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो द्वारा आयोजित इस बैठक में केंद्रीय मंत्रालय, राज्य सरकारें और मादक पदार्थों से संबंधित कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधि मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से निपटने के प्रयासों की समीक्षा करेंगे। भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स अंतरिक्ष एजेंसियों के प्रमुखों की 2026 की बैठक आज बेंगलुरु में संपन्न हुई। विज्ञान प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह समापन सत्र में शामिल हुए। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने कहा कि दो दिन की बैठक में आपदा प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन निगरानी सहित कई विषयों पर चर्चा हुई।
3: We had 26 delegates from
4: इस बैठक में 10 देशों के 26 प्रतिनिधियों के साथ साथ इसरो इन स्पेस और अंतरिक्ष विभाग के लोग भी शामिल हुए। इसमें ब्रिक्स देशों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए रिमोट सेंसिंग उपग्रह समूहों के इस्तेमाल पर काफी चर्चा हुई, जिसमें आपदा प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन और दूसरे पहलू शामिल थे। हमने मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन प्रबंधन तथा अंतरिक्ष अभियानों के सतत संचालन पर भी विचार विमर्श किया।
1: विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने 14वें पासपोर्ट सेवा दिवस के अवसर पर सभी पासपोर्ट अधिकारियों की उनकी समर्पित सेवा और नागरिकों के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के लिए सराहना की। श्री सिंह ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में भारत की पासपोर्ट सेवाओं में उल्लेखनीय परिवर्तन आया है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि वर्ष 2025 में क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालयों, पासपोर्ट सेवा केंद्रों और विदेशों में भारतीय दूतावासों के माध्यम से भारतीय नागरिकों को लगभग 1.5 करोड़ पासपोर्ट और संबंधित सेवाएं प्रदान की गई हैं। देश भर में पासपोर्ट सेवा केंद्रों और डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्रों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हुई है। वर्तमान में देश में ऐसे 545 केंद्र कार्यरत हैं। पिछले वर्ष 10 नए डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र खोले गए थे और इस वर्ष भी 10 नए केंद्र खोले जाने की योजना है। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी योजना ग्रामीण के मसौदे

0: सेवा समन्वय ढांचे पर आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय अंतर मंत्रालय बैठक का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता ग्रामीण विकास विभाग के सचिव रोहित कंसल ने की। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने बताया है कि ये बैठक अगले महीने की पहली तारीख से लागू होने वाले विकसित भारत जी राम जी योजना की तैयारियों के अंतर्गत आयोजित की गई। स्वच्छ गंगा राष्ट्रीय मिशन ने राष्ट्रीय नगर कार्य संस्थान के सहयोग से गंगा नदी के तट पर शहरी नदी प्रबंधन योजनाओं का विस्तार किया है। ये प्रबंधन योजनाएं नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत हैं। अब तक 13 शहरों के लिए शहरी नदी प्रबंधन योजनाएं पूरी हो चुकी हैं। इस योजना के प्रथम चरण में 27 शहरों और दूसरे चरण में 33 शहरों के लिए योजनाएं तैयार की जा रही हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के तारातला इलाके में निर्माणाधीन गोदाम की छत गिरने की घटना के बाद राहत और बचाव अभियान जारी है। हादसे में अब तक 3 लोगों की मौत की खबर है। एक रिपोर्ट।
1: बचाव काम युद्धकालीन तत्परता से जारी है। अब तक 18 श्रमिकों को मलबे की ढेर से जिंदा निकाला गया है। करीब 15 और घायल लोग वहां फंसे रहने का संभावना है। घायलों की इलाज SSKM अस्पताल में हो रहा है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है उससे भी ज्यादा लोग फंसे हो सकते हैं। सेना, NDRF, सिविल डिफेंस, फायर ब्रिगेड और कोलकाता पुलिस मिलकर बचाव अभियान चला रहे हैं। दुर्घटना के कारण पर उन्होंने कहा कि प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक निर्माण के नक्शे में त्रुटि थी, लेकिन जिम्मेदारी किसकी है ये अभी स्पष्ट नहीं है। कल विधानसभा में इसी विषय पर बयान दिया जाएगा। आकाशवाणी समाचार के लिए कलकत्ता से अभिरूप भट्टाचार्य।
0: अरुणाचल प्रदेश के की पन्योर जिले के याजाली स्थित पोसा में मूसलाधार बारिश और अचानक आई बाढ़ से काफी नुकसान हुआ है। ताजा खबरों के अनुसार 4 लोग लापता हैं, 17 लोग घायल हुए हैं, जिनमें 3 की हालत गंभीर है। प्रशासन नुकसान का आकलन कर रहा है। भूस्खलन के कारण प्रभावित क्षेत्र याजाली और होजपोटिन दोनों तरफ से अब भी संपर्क से बाहर हैं। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा है कि वे स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। उन्होंने लोगों से सभी सुरक्षा निर्देशों का पालन करने को कहा है। इस बीच अरुणाचल प्रदेश में तेज वर्षा के बाद असम में निचले इलाकों में बाढ़ की आशंका को देखते हुए राज्य सरकार ने सभी एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा है। SDRF, NDRF और अन्य आपातकालीन बचाव दलों को तैयार रखा गया है। मौसम विभाग ने कल देश के कई हिस्सों में मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। पूर्वोत्तर क्षेत्र, झारखंड, महाराष्ट्र, उड़ीसा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, तटीय कर्नाटक, कोंकण और गोवा में तेज वर्षा हो सकती है। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कल तक तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान की स्थिति बनी रह सकती है। बिहार में भी अगले 2 दिनों तक ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है। दिल्ली में कल बारिश की संभावना है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान द्वारा कश्मीर मुद्दा उठाने पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की है। पाकिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र मंच का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाते हुए भारत ने कहा कि सह अध्यक्ष के रूप में निष्पक्ष रहने के बजाय पाकिस्तान ने पद का दुरुपयोग किया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि आसिम इफ्तिखार अहमद की टिप्पणियों के जवाब में जम्मू कश्मीर पर भारत का रुख दोहराया।
2: मैं पाकिस्तानी पक्ष की टिप्पणियों का उल्लेख करता हूं। यह हैरान कर देने वाला है कि ऐसे मंच पर जहां राजनीतिक मुद्दों पर संतुलित और निष्पक्ष चर्चा की उम्मीद की जाती है ऐसी बातें कही गई। मैं दोहराना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर पूर्ण रूप से भारत का घरेलू मामला है।
0: भारतीय नौसेना के जहाज उदयगिरी और कवरत्ति दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में अपनी परिचालन तैनाती के अंतर्गत वियतनाम के हो चि मिन्ह शहर से दौरा पूरा करने के बाद रवाना हो गए हैं। इस दौरे पर पूर्वी बेड़े के फ्लैग ऑफिसर रियर एडमिरल आलोक आनंद ने हो चि मिन्ह शहर की पीपल्स कमेटी और वियतनाम पीपल्स नेवी के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समुद्री सहयोग, आपसी समन्वय और क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा पर चर्चा की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में INS कवरत्ती पर एक संयुक्त योग सत्र भी आयोजित किया गया। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं अम्बरीश सक्सेना।
3: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 791 अंक बढ़कर 76,991 अंकों पर बंद हुआ। निफ्टी भी 198 अंक बढ़कर 24,022 अंकों पर जा पहुंचा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के व्यापक बाजार में मिड कैप 100 सूचकांक

0: 0.1% और स्मॉल कैप सूचकांक 0.4% तक बढ़ा। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया एक डॉलर की तुलना में 8 पैसे मजबूत होकर 94.66 रुपए पर बंद हुआ।
1: फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप बी मुकाबले में देर रात स्विट्जरलैंड का मुकाबला कनाडा से होगा। इसी ग्रुप में कतर और बोस्निया एंड हर्जोगोविना आमने सामने होंगे। दोनों मुकाबले रात 12:30 बजे से खेले जाएंगे। यूएस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला डबल्स में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। भारतीय जोड़ी ने स्पेन की पाउला लोपेज और लूसिया रॉड्रिक्स को हराया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि दूत जेमिसन ग्रीर के साथ व्यापार वार्ता की प्रगति की समीक्षा की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री जो ह्यून से सोल में मुलाकात की। वैश्विक चुनौतियों के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को मजबूत करने का आह्वान किया। ओमान ने होर्मुज जलडमरू मध्य से एक अस्थायी समुद्री गलियारा खोलने की घोषणा की। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में निर्माणाधीन गोदाम गिरने से 5 लोगों की मौत, बचाव अभियान जारी। अरुणाचल प्रदेश में मूसलाधार वर्षा से अचानक बाढ़ आई, असम में चेतावनी जारी की गई। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में कनाडा आज रात स्विट्जरलैंड से खेलेगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।